0: ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे ऐसे कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a male dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
2: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
1: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
2: अभी मैंने फिर से राइट जाना है
1: ओके
2: स्लाइटली ओके
1: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए, जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट, जो मैंने कमाई इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।

0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. Anyone can drive. Anybody can drive. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
1: And more mobility and innovation next time on Rev.

0: Mindset, make the right decisions. DW News on Instagram. For those in the know, follow us.
1: बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ, तो लड़कियों को क्या देते हैं? डॉल।

0: สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี่บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเขาอะผมก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इंफोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
2: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
1: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
2: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
1: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए। जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th डे पे, इट्स 10 डेज कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट, जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।

0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पर. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनी वन कैन ड्राइव, एनी बडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैगलाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं.
1: एंड मोर मोबिलिटी एंड इनोवेशन नेक्स्ट टाइम ऑन रेव.

0: แต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณ 4:40 ถึง 4:50 ชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเป็นจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี่บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเขาอะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इंफोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
2: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
1: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
2: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
1: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए। जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट, जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।

0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पर. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनी वन कैन ड्राइव, एनी बडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
1: And more mobility and innovation next time on Rev.